परास की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: Listener's Choice, brought to you by Star Plus, Star Gold and Star Bharat.
1: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत. चैनल पार्टनर्स टॉप अप फूड्स एंड परी बासमती राइस.
2: The hit of the hour on Sunrise Radio, brought to you by Southall Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southalltravel.co.uk.

0: Listener's Choice, brought to you by Star Plus, Star Gold and Star Bharat.
1: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत. चैनल पार्टनर्स टॉप अप फूड्स एंड परी बासमती राइस.
2: The hit of the hour on Sunrise Radio, brought to you by Southhold Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southholdtravel.co.uk. Amreen in Karachi, Mohammed Shinwari Sahab in France, and to everybody else who's wishing me a beautiful time away, thank you so much. First play on this show, Palak Muchal back with a single, a brand new single, Is Barish Mein. हालांकि लंदन में इस वक्त जहां मैं हूं बारिश नहीं हो रही है, बट इट इज ओवरकास्ट. बट यू नो व्हाट, बारिश के दिन ऐसा एक गाना जिसमें बारिश का जिक्र हो, इज़न्ट दैट अ मैच मेड इन हेवन. लाइक कड़क चाय एंड पकौड़े, फिश एंड चिप्स, कॉफी एंड क्रोसों, इडली एंड सांबर, राजमा एंड चावल. आई एम स्पीकिंग बिकॉज द कंप्यूटर हैज मिसलेड मी. इट टेल्स मी दैट आई हैव स्टिल गॉट अबाउट 2 सेकंड्स टू चिट चैट.

0: 2000 की फिल्म फिजा का ये गाना, खूबसूरत सा गाना, वन ऑफ उदित नारायण एंड अलका याग्निक्स मोस्ट लव्ड ड्यूएट्स। आज हम आहिया इसे आप सुन रहे हैं सनराइज पर, आज वेंसडे की सुबह 19 अगस्त की सुबह, शबनम साही के साथ। A bit of this, a bit of that, a bit of chit, a bit of chat. रहिएगा मेरे साथ पूरे 12 बजे तक। गुड मॉर्निंग
1: लिसनर्स चॉइस ब्रॉट टू यू बाय स्टार प्लस, स्टार गोल्ड एंड स्टार भारत।
2: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत। चैनल पार्टनर्स टॉप अप फूड्स एंड परी बासमती राइस।
3: The hit of the hour on Sunrise Radio, brought to you by South Hole Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southholetravel.co.uk.
0: Sunrise Radio par is ghante ka hamara hit of the hour, finally playing this song from Avarapan 2. Now, of course, this is a report which was compiled yesterday, I think, and they are saying that 5 days in, Rajkumar Santoshi's partition drama, Batwara 1947, it's winning hearts, yes it is, but it is not winning wallets. Despite a cast led by Sunny Deol and Shabana Azmi, the film is finding it tough to hold its ground in cinemas, especially with Imran Hashmi's Avarapan 2 pulling audiences away. In fact, there is one report which says that Avarapan 2 has already amassed ₹1 billion worldwide, globally. Apparently, it is the clear winner. This was a big box office clash. Batwara 1947, Avarapan 2, Arijit ki awaaz mein ye gana.

0: this version of the song taken from Thank God from the year 2022, I see. Anand Raj Anand. Dil de diya hai, jaan tumhe denge, daga nahi karenge sanam. इसे आप सुन रहे हैं सनराइज पर आज वेंसडे की सुबह शबनम साही के साथ. थैंक यू टू ऑल माय लवली लिसनर्स हू सेंट मी ब्यूटीफुल मैसेजेस टू कीप मी गोइंग फॉर द नेक्स्ट 5 days. यू आर गोना मिस मी राइट बिफोर यू नो इट इज गोइंग टू बी ट्यूसडे. एंड शबनम साही सेइंग अ बिट ऑफ दिस अ बिट ऑफ दैट अ बिट ऑफ चिट अ बिट ऑफ चैट बिजनेस एज यूजुअल. Enjoy Sanjay's company tomorrow, Rajguy's company on Friday, and Ajay's company on Monday. I'm sure you will. Sameer in Aberdeen says, excellent playlist. Loved each and every song. Thank you, Shabnam ji. We'll miss you for the next couple of days. I'll be back before you know it. Thank you for that message. Mr. Khan, yes, indeed. Aapko maafi milegi ya nahi for a very late good morning? Ye baad mein soch ke bataungi. Lekin aapka share jo hai na, short and sweet. Let's come to that first. Kya baat hai? Bade chupchap baithe ho. अर्ज किया है क्या बात है बड़े चुपचाप बैठे हो कोई बात दिल पे लगी है या दिल लगा बैठे हो. वाह.
1: लिसनर्स चॉइस ब्रॉट टू यू बाय स्टार प्लस स्टार गोल्ड एंड स्टार भारत. आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत. चैनल पार्टनर्स टॉप अप फूड्स एंड परी बासमती राइस.
0: The hit of the hour on Sunrise Radio brought to you by Southhold Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southholdtravel.co.uk. My Gule Gulzari Neeling, thank you so much for a warm and lovely message. Thank you.

0: Listener's Choice, brought to you by Star Plus, Star Gold and Star Bharat.
1: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत. चैनल पार्टनर्स टॉप अप फूड्स एंड परी बासमती राइस.
0: द गोल्ड रेट विद सनराइज रेडियो ऑन 963 एंड 972 AM इन लंदन, नेशन वाइड ऑन DAB, वर्ल्ड वाइड वाया sunriseradio.com, ऑन द फ्री सनराइज रेडियो ऐप फॉर योर होम स्मार्ट स्पीकर्स एंड फॉर द रेडियो प्लेयर एंड नेशन प्लेयर ऐप. Stay connected to your favorite Sunrise Radio 24 hours a day, 7 days a week.
2: Gold is trading at £106 per gram. I'm going to play you the hidden gem one more time, but a last reminder, Star TV is celebrating 25 glorious years in the UK, and to mark the occasion, they're giving away a pair of tickets to see the legendary Sonu Nigam live in concert. We're asking you to tell us your favorite Star TV memory by sending us a message on WhatsApp. 07925 700 272 is the number, and you've got about 5 minutes to get your message in if you haven't done so already. Okay, good luck. Right, here we go one more time with your hidden gem.

0: ओए मैं फुल सिलेक्शन चख ले आया।
1: चितवाल्स मजेदार स्पाइसी इंडियन स्नैक्स आर अवार्ड विनिंग ग्रेट टेस्ट ऑफ 2026 विनर्स, अ ब्रांड बाय एसओपी इंटरनेशनल, नाउ अवेलेबल एट मेजर सुपरमार्केट्स एंड योर ट्रस्टेड लोकल एशियन सुपरमार्केट्स। एंजॉय विद फैमिली एंड फ्रेंड्स।
2: आज भी जलसा, कल भी जलसा, हर मौके पे जलसा ही जलसा। घुघरा, मठिया, खाजली और जलेबी गाठिया का तो जवाब ही नहीं। मिठाई और फरसान के बाद शॉट जलसा स्वीट्स एंड सेवरीज, 28 वॉटफोर्ड रोड, वेम्बली। ओपन ट्यूजडे टू संडे।
1: UK, get ready for the biggest Bollywood party of the year. Pepe's Piri Piri proudly presents the sensational Queen of Bollywood Beats, Neha Kakkar, live in concert. And joining the madness, Tony Kakkar, 11th of October 2026, live at the iconic OVO Arena Wembley. An unforgettable night of music, energy and non-stop entertainment awaits you. Tickets are selling fast. Book yours now before it's sold out. Brought to you by Rock On Music, PRC Direct, Embryo Events, UK Event Life, and Tutors Valley. Catering partner Ragasan. Associate partner Shan Properties. Radio partner Sunrise Radio. Advertise on the UK's number one commercial Asian radio station. Call the Sunrise Radio sales team today on 020-8574-7777. This is Sunrise, the UK's biggest.